हम अकशवरुं तिमन रसकलांगे आय तक काफिर मीहुं निकं हुरे तिमन रसकलांगे एवरे नरक वद्दवा हुशीमे एवरेंगे हंतर रोफिलज्ज कुम्मे हिंदकु एवरेंगे हंतं एनुं हंतकक बदल कुरवमे एई एवरें अजाब गे रह लिबगत मट्टक हम अकशवरुं अल्लाही अजीज वंत हकीम वंत रसकलांगे कम गावे।

हम अकशवरों तिमन रस कलांगे आय तक खा फिर मी हूँ निकं हुरे तिमन रस कलांगे एवरे नरक वद्दवा हुशी में एवरेंगे हंतर रो फिलज्ज कुम हिंदकु एवरेंगे हंतं एनू हंतक का बदल कुरव में एई एवरें अजाब गे रह लिबगत मट्टक हम अकशवरों अल्लाह ही अजीज वंत हकीम वंत रस कलांगे खम गावे।

खड़ी ही अहर में इम्हा अरबी के शरफ है अहर में के शरफ दुकफा वजवे ताकरे रूह में गान वजवे हटे मिवाह के राजा के अरिफ का दिन नमों इबामियों के शरफ है एक इज्जत का वद्दार है विदार विजय देम इबामियों मिदरबार बदे अदब अदा कुलामों हिराकुद इबामियों ने बल्दवा तर्जमान विदार विजय हिजाज कराएगा नबी कम दावा कुल बैगिंग उल्वा बेकर का इतिबामियों के तरीन इम्मे गामी है कि काक तो आहा बजा रहे तर्जमान मिसवाद कुर्मों इबामियों अबू सुफियान दक्कैफ हुए हिराकुद तियमीहा इम्मे कुरिया नुकमेफा एहमियों एना के चंकोले फाता यही सबक तिबेर है देम मिहिं कंत कुलामों हिराकुद इही ना रहे आवरें तिबामियों तिया देख कि मीहा कुरिया निर्भा तिबामियों एना के फातुगा विबाती बी आवरें एना या कुरा मिले सवाल तक एना जवाब दे इरु दोगिन खदा फिनामा रखी मकान जा इशारतुं आवरें नंग अंगाल मरे आवरें नी काव कं तिबामियों नंग इंगे ने रस्तस करियों के दरबार का दुखदामियों की जजाय की ए मीह को फुरान का नगल देने हंदां को गें तिबे और कमे दिन रस की फान अबू सुफियान को मच्चा कुर में फुल दब्बा इन वैगिन सवाल तक की कुरुमा फट रही है हिरकुल तिबामियों के तिरेगा नबी का दवा कुर वैगिन मुड़वा बेकर को नसब की तिबामियों के तिरेगा कुन का नसब ही है अबू सुफियान एक फान की अलगुन में तिरे नसब अरा हुने बेकर के हिरकुल एक फान कुरीगा तिबामियों के तिरे एवस मीह को एफद बहे बुने नबी कम के दवा एक कुन ओण है अबू सुफियान नो नो उले फे नेते हिरकुल इकान मिहारती विदालुगें उलुबा इच विदालुम के कुरीगावस इतुरफु हद्दवा मकर हीने हद्दवा खियाने तेरवे उलुबी हेये अबू सुफियान नो नो नोलुबते हिरकुल इकान काफा कलुंग तेरेगा रसकले कुलुबी हेये अबू सुफियान नो नो नोलुबे हिरकुल इकान नाय तबावे उलेनी मीहुं के तेरे मै मळु मीहुं हे नवत देरा दईफुं हेये अबू सुफियान देरा दईफुं ने मद वदु मै मीहुं बे सेव तबावे एकमा को गिना ही देना मीहुं ने हिराकुल ए तबावा मीहुं बनी गिना है नो तो मधु है अबू सुफियान दानी गिना उन्ने हिराकुल इकड़े इकफान के दीना वें इकाकुएस इदीना ही हितान वें के नुकुमे जाइए अबू सुफियान नो नुनी कुमे हिराकुल इकड़े इकफान आहदी कुरबाफा गदरी कुरे भी है अबू सुफियान नो नुकुरबे मिहार अगुन में ना इकड़े इकफान आज में दुगा बनी आहद नामा है दिए फे ए अहदवस हद्दवा गुतिन इदान ताय हिरगुलु तिबा मिहुन्ना इक इफानाय मेदुगा हंगुरामे हिंगे हिगे अबू सुफियान आद हंगुरामे हिंगे हिरगुलु हंगुरामे का वनी कीनकु हिगे अबू सुफियान बयफार अगुन में गदवे बयफार इक इफान गदवनी हिरगुलु तिबा मिहुन्ना इक इफान अमर कुरबा उलुमनी कोंकों कंता कं हिगे अबू सुफियान इक इफान अमर कुरबनी एमएम बेगिन एमए कलांगे कं अलुकं कुराशे अलगुन में काफ़ें अलगुन तक कौन उन खजांगे तो दूँ कुल लाफा मैं रस खजांगे रस कम पुला यहीं एब्बी सिच का इबाय वेरे नुकुला मरे हिलागुलो दें कौन कम कंग है ये अबू सुफियान दें बिदालवानी नमाद कुरारे चेदुबुनारे दोगुन हदारे सहवानी अकंत दूँ को रक्का तिरवारे अहुद फुद्दारे अमाना इंग अदा कुरारे आदुल वेरिवारे अनिया नुकुरारे मिकाज वाक ते क्यों हिलागुलो इस तरह जसवैगिंग इरुकलोक इन्नवाफा एना के वैकनाय फरातगाती बड़ु दिफादिरी यकाई मर्मनु वाकलु दक्वाफा अबू सुफियाना दिमाग इब्रोडैगिंग फा विदाल विजे अहरें कले कुरे मेही इकले गफान के नसब के वाह के कले कि मुनी एई नसब अरा हुने इबे के लको मते फै रसूल बेकल न की इबे कल न फनुवे गौमे के मैन नसब के तेरे फनुवे बैके अहरें मेही ते बामियो के तेरे इकले गफान के कुरीगा एककुस इबावत के दावाय कुल तोय कले कि मुनी नुकुरा का मते एक कुल कम का आवान एक एक फानी विस के बामी में इतने ए मिहुं में सुले वत्तर का उड़वा अबे का कम का ही विस्ता है जेम यही एक एक फानी इतुर फुल हद्द आमी हूँ ना मकर ही जंग हद्द अखियाने तेरी तो है कलेगी ती अपना नी नों कमरे मिहुं ना दोगुन हद्द अखियाने तेर नो आमी हको ए मिहा के कलाई की भी दोग हदे नो लेने जेम यही एक एक फान के काबफा कलुंग के तेरेगा रसकले कुल भी तो है कलेगी ती अपनी नो उड़वा कम गए उड़वी कम का आवान यही ए रसकंग अमरा गिनावमंग उले मीह के ही विजय है दिम यही एक जगफाना सबावनी मीहुं कुर मैं मलमीहुं तो अनुवत देरमीहुं तो है कलेक ते मुनी देरमीहुं कवरे एकमी हम एहें हुन्न कविके रसूल बेकलुनाई एकंतव कुरी कोलगा सबावानी देर दाइफ मीहुं ने दिम यही एमीहुं बनी उनी तो अनुवत इतुर तो है कलेक ते मुनी इतुर वमंदा कवरे ईमा कवकी एकाद कविके फुरी हम वान दिन दानी हम इतुर वमने देम यही एक इगफान के दीन अब न मी हूँ ए दीन अब रूले रहा के नुकमे तो अनुत अनुत है कलिए की थी अपनी यह नुआ कम के ईमान कम की एक हाल कम के